यकी लक्ष्य लेकरमन इसीन कुम बैसे पान ऐसे पान एक दंग मैं मैसी इस तो उठ फॉर मैं पास इन विश्व शिन से सही तो से सही तो अगर सीन वो दी बल्ले दी करीबी करवें एक वाले अली रियन ऑफ इबुरे दारम कन एक कुम बल्ले लंदा Ja, sexy op mijn trekker, stoot gaat Sarah.